हमारी आने के लिए लाऊ मना का मुखा खाई ओला पही यूं वा नो वो माय खले मुठवा खेले ओहो लोई वो फोले माले लुका खुरवा खु मामाला मोतन लबुला साया लवा सेवे लबुला सा असिन तो कह खाई मुन्नो ना मनुआन तुम निरामी कु खाई एला ही मेला अनि वशी है वो ने वा फेरा यावो मुन्नी हुआ ने पाने मोतो लवाने नो वोरा यावो सीसो ने मिनु तो मिलो को मिथानु ने मिथानु ने पिया हुन तो खुमन ने मिते को या सनुल मो ने मा कुआं पांटो लाओ पचेरिया ओले लो वा एना माइलो नि हला वो अशीर खंटा वा ने कुन्या तानि के लो पहरा का ने मिते को या सारा मुसांबिक मारे ने बेनेडिटो अंतोनु शामु सेंट्रल टेक्निका लावे Agustín Armando Centro Emisor Janet Hortensio Tío Lala Bula Murradio Maño Mujale No Come